गुप्त सुबह करके अरसात समुद्र में की मत कहो। काट बनास्पति सगरी दिख गए हो के देखन काज बने हो। सार सुता पकता करके जुग कोट गणेश के हाथ रखे हो। काल कृपाण ना बिनती बेसुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत न कूट बराद हमारे अनक विधि समझाओ। हम अज्ञान अलप मत थोरी तुम

0: कोए।
1: आज डट के लोड़ इस प्रचार की, बहुत लोड़। आम बंदा कहंदा मेरे वर्गा चंगा कोई नहीं, महाराज कहंदे अवस्था बना, हम नहीं चंगे बुरा नहीं, कबीर हम सब ते बुरे, हम तज भलो सब कोए, जिन ऐसा कर बूझिया मीत हमारा सोए। ये दवाई ते कौड़ी है पर खालो ते बड़ी शांति। अज बहुत लोड़ है प्यारे इस प्रचार दी, किसे दे औगण नूं जरना ते कलेश दा समा लंघा दे। मैनू याद है आ संत बाबा भूरी वाले है ना, असी बाबा जी दे बचना दी शील्डा वंडदे आ, एक ते आए प्रोग्राम ते ते शील्ड देती ते उते बचन लिखा सी निम्रता रखण नाल विपता दा समा टल जांदा है। बचन है बाबा नानक सिंह जी, निम्रता रखण नाल विपता दा समा टल जांदा है। मैनू पांच महीने बाद मिले ते कहण लगे ओ मैनू शील्ड बड़ी कम आई। मैं कहा जी किवें? कहिंदे जिहड़ी मेरी गड्डी ना छोटी जी बस अपने बहन दी, कहिंदे मैं जिथे अगली सीट ते बहना ना वो सामने लाई हुई है, ते कहिंदे इन्नी कम आंदी है कि कोई गड्डी कोई दूजा बंदा माड़ी ला जांदा जां कुछ होर गल हो जांदी ते कहिंदे कई वारी पहले आ जांदा सी गुस्सा, ते कहिंदे फिर वो जदों शील्ड पड़ ली दी ना वी, कहिंदे उस वेले एक मिनट निम्रता रख ली दी, लड़ाई टह जांदी। आखो सतनाम, औगण जर लिया। एवें नहीं महापुरुषां ने कोई बचन कढ़े हुंदे, उन्हां दी गहराई हुंदी, गहराई बीबीओ इनू वरतना है, इहदा लाभ लैणा है, इहदी गहराई च जाणा है। घर च कोई चांस होवे दूजे दा औगण ही हुंदा ना, उहनू अद्धे मिंट मिंट लई जर जाओ, कई वारी कई कलेश दे टाइम लंघ जाणगे, बीत जाणगे। निम्रता रखण नाल विपता दा समां टल जांदा, ना रखो जवाब दे दो हो गया शुरू काम। इह वी निर्धन नूं पालणा भाई अज लोड़ है, क्यों इस वेले युग जा रहा है फुल फुल पटा फुल ईरखा दा युग है, ते दवाई कौड़ी है भावें कोई चप्पा पुड़ी लै जाना ते भावें अद्धी पुड़ी लै जाना पौनी पुड़ी लै जाना लै के जरूर जाना, ताकि संघ च आया किसे थाएं आवे। युग है ऐसे

अमुल अनमोल ते दरगाही बाणी दा कीर्तन अते समाज सुधार जीवन जुगत अते अध्यात्मक विचारा पाई गुर इकबाल सिंह गुरुद्वारा माता कौलां जी वाले तिना दी रसना तो सरवण कर रहे सी। भाई साहब तो गुरु नानक पातशाह जी निष्काम सेवा लै रहे हन। आप संगत दी दित्ती माया रूपी सेवा नाल अमृतसर लुधियाना जलंधर जंडियाला गुरु बरेली ते दिल्ली जमुना पार विधवा बीबिया दे केंद्र चल रहे हन। इस दे नाल ही देहरादून लुधियाना जंडियाला गुरु ते अमृतसर विच हस्पताल दे रूप विच सेवा अते होर 46 जगह धार्मिक ते समाजिक सेवा चल रही हन। हर पल हर घड़ी हर पक्ष तो आप संगत दी असीस की लोड़ है। भाई साहब वल्लों बेनती है अमृत छको अमृत वेला बनाओ अमृत बाणी नाल जुड़ो।

ते पिताजी बख्शिश ले लेगा, पर मनन भी कोई करेगा जो मन करके करेगा, मनन वही करेगा जो पिता दे हुक्म नु सुन के समझ के कमाएगा। सुनना इस करके है समझन वास्ते, समझना इस करके है सीखने वास्ते, सीखना इस करके है मनन वास्ते। आखो भाई फिर बेनती कर दिया, सुनना इस करके है समझन वास्ते, समझना इस करके है सीखने वास्ते, सीखना इस करके है मनन वास्ते। आखो भाई जे एक पत्नी पति का हुक्म मनेगी, मनन करेगी मन करके, ते अपने पति दे प्यार दा सुख ले लेगी। लेकिन अवस्था वही है जे अगर पत्नी अपने पति दे हुक्म नु सुनेगी, समझेगी, सीखेगी, मनेगी। जे सिख गुरु दे हुक्म नु मनदा है, मनन करदा मन करके, ते सिख गुरु दा प्यार ले लेगा, गुरु सिख दे अंदर वासा कर लेगा, वो गुरसिख होएगा। पर गुरसिख भी गुरु दे हुक्म नु, गुरु दे शब्द नु सुने समझन लई, बाणी दा पाठ करे समझन लई, बाणी सुने समझन लई, समझन लई, समझे इस करके सिखन लई, सिखे इस करके मनन लई। आखो वाहिगुरु, सिर पाठ ही ना करे लेकिन पाठ करे समझन लई, समझे इस करके सीखन लई, सीखे इस करके मनन लई। मैं पाठ कर लिया पर समझिया नहीं, मैं सीखांगा की? आखो वाहिगुरु। मैं गुरु का हुक्मनामा सुन लिया पर समझिया नहीं, मैं सीखांगा की?

से बख्शिश भी नहीं। सच है पर मनण का संबंध मन नाल है। जिन्होंने मन करके मनिया, जिन्हों के अंदर मन विच प्रेम सी मनण लई, उन्होंने सुनिया भी मनिया भी, पर एक जुगत नाल मन कीता पाओ आप वाहिगुरु। सुनिया मनिया मन कीता पाओ, तुसी सुनिया। जे मन विच प्रेम रख के सुनिया ही नहीं, भोग पै जाएगा आप वाहिगुरु। मनोगे की जे मन विच प्रेम रख के सुनिया ते मन विच प्रेम रख के मन लिया, फिर तो अंतरगत होता जाएगा आखो वाहिगुरु। मैल खत्म हो जाएगी, निर्मल हो जावांगा आखो वाहिगुरु। गल मनन दी, अज असी दुखी क्यों हां, सुखदाते दी गल मनदे ही नहीं आखो वाहिगुरु। अज साडे भटकना क्यों है, सुखदाते गुरु परमेश्वर की गल वल तो सुनते ही नहीं, सुनते समझते नहीं, समझते मनते नहीं आखो वाहिगुरु। जेड़ा पाठ कर रहे हैं ना, एक मैं बेनती करा, मैं दुखी हां, रोगी हां, मैं डॉक्टर कोल गया, डॉक्टर ने मेरी नब्ज फड़ ली, डॉक्टर ने नब्ज फड़ के मैनू मेरी बीमारी दस दिती, एक पर्ची ते मैंने दवाइयां लिख दितियां, दवाई खाण का ढंग दसता सवेरे दोपहरे शामी, नाल दस दी विधि। तुसी दसो कि मैं पर्ची नू हाथ विच फड़ के पाठ ही करी जावां, कि मैं डॉक्टर की पर्ची का सारा दिन पाठ करता जावां, ते दवाई सवेरे खा दोपहरे खा शामी का, सवेरे खा दोपहरे खा शामी का, लेकिन ना मैं दवाइयां लियावां ते ना मैं खावां, कि मैं उस पर्ची की आरती उतारी जावां, कि मैं उस पर्ची की जोता जगाई जावा, मैं ठीक हो जावांगा आखो वाहिगुरु। समझ की गल ऐसी कि मैं डॉक्टर की गल जिन्हें मैं नहीं समझ सकता, नहीं पढ़ सकता, किसे को समझा, डॉक्टर को समझा या किसे को समझा, फिर देखा मैं दवाई सवेरे शामी किवें खानी, विधि किवें है, परहेज की है। ठीक है, मैं डॉक्टर नाल प्यार करांगा, मैं डॉक्टर का सत्कार करांगा, जिसने मेरी बीमारी लभी मेरे मन भी डॉक्टर का सत्कार होएगा, डॉक्टर की याद होएगी, डॉक्टर नाल प्यार होएगा जिसने मेरी बीमारी लभी, लेकिन डॉक्टर भी मेरे से ता प्रसन्न होएगा जेड़ी मैं दवाई लिखी है, ये मरीज खांदा भी है कि नहीं आखो वाहिगुरु। साडे अंदर भटकना, असी खिजदे हां, खपदे हां, खिजदे हां, अपने आप नूं तरमी कलाउण वाला भी खिजी जांदा, हाथ विच गुटका फड़ के पाठ करदा फिर भी कल्पी ते खिज जांदा, क्यों? मेरे गुरु वैद ने, मेरे गुरु परमेश्वर ने इस मनुखता दी जमीर उच्ची करन वास्ते, इस दी तकदीर उच्ची करन वास्ते, इस कराए पे होए नूं राहे पाउण वास्ते, किरत कर्म के विछड़े नूं मुड़ के मिलाउण वास्ते, इस दा सच्चा ते सुच्चा आचरण करन लई, इस दे विच नेकी दे गुण भरन वास्ते, परपकारी मुजस्मा बनाउण वास्ते, सरबत दे भले लई इस दे अंदर सोच भरन वास्ते, मेरे गुरु परमेश्वर पूरे वैद ने डायग्नोज कीता, इस दी बीमारी दसी ते नाल तुरदरगाही बाणी दे दिती आखो वाहिगुरु। तुरदरगाही बाणी, इस बाणी नूं सुनी, इस बाणी नूं पढ़ी, लेकिन समझण वास्ते समझी, इस करके सिखण वास्ते सिखी, इस करके मनण वास्ते, जे परमेश्वर दी बाणी ए जड़ी औखट है तेरी जमीर नूं उच्चा करन वास्ते, सच्चा ते सुच्चा आचरण बनाउण लई, तेरे विछड़े होए नूं मुड़ के प्रभु मिलाउण लई, तेरा किरदार उच्चा करन वास्ते, तेरा आचार उच्चा करन वास्ते, जे अगर तू परमेश्वर दी बाणी नू सुने, इस लई समझण लई समझे, इस लई सिखण लई सिखे, इस लई के मनण लई, जे तू गुरबाणी दी विचार नू छकदा जाएगा, दुखां दा नाश हो जाएगा आखो वाहिगुरु, सुखां दा प्रकाश।

लेकिन सवाल यह है जे अगर हुक्मी दे हुक्म मनण दा संबंध है ते मनण दा संबंध फिर मन नाल है।

समझ आ गई, मन बारे समझ आ गई। जदों मनन होया आखो वाहिगुरु, फिर की समझ आई? आखो वाहिगुरु, बेनती करन लगे। हुण तक असी तुसी जीवन जीउंदे कितने क मेवे खा गए होवांगे, कोई अंदाजा है? हुण तक असी किन्ना क पानी पी लिया होएगा, कोई अंदाजा है? तरह तरह का मिठा पानी रसां वाला। हुण तक तुहानू मैनू कोई अंदाजा है कि किन्ना भोजन छके होवांगे, किन्ना क फल छके होणगे, किन्ना किन्ना सुंदर पहनना कर लिया होएगा, कोई अंदाजा है? हुण तक असी किन्ने खा गए, किन्ने पी गए, किन्ना पहन लिया, किन्ना छक लिया, तरह तरह के रस छकते गए, छकते गए, छकते गए, फिर भुखे दे भुखे। आखो वाहिगुरु, दुख का कारण यह हुई है। आखो वाहिगुरु, पता नहीं किन्ना गुण तक छक गए, फिर भुखे दे भुखे, फिर जीव दे चस्के नहीं मुके, फिर मन दियां इच्छावां नहीं मुकियां। इतना कुछ पहन पहन पहन के तन तक ही ढकना सी, अपना मन भी नंगा कर बैठे, तन तक ही ढकना सी, अज मन ही नंगा हो गया। आखो वाहिगुरु, सिर बंदा बाणी नालों नहीं टुटिया, बाणे नालों भी टुट गया। आखो वाहिगुरु, सिर्फ सच नालों नहीं टुटिया, आचार नालों, सच्चे आचार नालों भी टुट गया। आखो वाहिगुरु, फिर भुखे दे भुखे। मेरे सतगुरु कहते, आ मैं तुम दसा, जे तू मेरी गल मन लवे, मनन कर लवे। आखो वाहिगुरु,

दिन नंदन होएगा ही नहीं, तेरी पत रह जाएगी, दरगाहों पत रह जाएगी। अतो वाहिगुरु, जे तू मनन कर गया, तू तो टुटिया होया सी, तू तो पाटिया होया सी, आ मैं तेन जुगत दसा, तेरा मन भगती नाल सीता जाएगा। आखो वाहिगुरु, जे तेरा मन ही भगती नाल सीता जाए फिर तो दुखां का सवाल ही नहीं पैदा होंदा। आखो वाहिगुरु, फिर तो दुखां का सवाल नहीं, दुख उन्होंने नाल हन जिन्हों का मन भगती नाल नहीं सीता गया। दुखी ओने भटकते, ओने खपते, ओने खिंचते, ओने जिन्हों का मन संसार नाल जुड़िया, निरंकार नाल नहीं।

सुख नानक संतन की सेवा, चरण संत कोई पीवना, भाग हुआ गुरु संत मिलाया, प्रभ विनाशी कर में पाया, गुरु संत मिलाया, अखवाई।

बड़ी नजर करे जा पंडरी सतगुरु पाया तेजियो बुद्ध जन्म परमया सतगुरु सत सुनाया सतगुरु देवता तक उन्हें सत सुना लोग सुबह।

श्रोमणी कमेटी ने अरदास विच लफज दर्ज किए हुए ने हरिमंदर साहब तो ही ये लफज बोले जाते ने युग आ गया टीवी का रेडियो का हर सिख के घर विच लफज पहुंचते ने सही प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चेता हे मेरे माधो हे वाहिगुरु मैनू उन्हां दा मेल करा जिन्हां नूं मैं मिलां ते पढ़ां ते मैनू तेरा नाम चेते आवे।

ब्रह्म ज्ञानी सद जीवे नहीं बचता, नाम रहो सब। माता जी चले गए, पिताजी चले गए, बाबा जी रह पे। शस्त्र विद्या सखण लग पे, गुरबाणी दी विद्या सखण लग पे। वेले बह के मैं रोटियां नहीं पाड़नी, होर भी कई अज आप जी दे नाल बाबा जी आप ही ओ सीन सांझा कराण जिथे जाना चाहनी हां। एक दिन बाबा दीप सिंह जी संगत दे जूठे कौले मांजदे पे, अज ये गुण लै जाना बाबा दीप सिंह हुण ते कौले मांजण। बाबा जी कौले मांजदे पे, कोला हाथ च, नाल नाल सिमरन, नाल नाल कोला, नाल नाल सिमरन, नाल नाल कोला। इन्नी क लिव लग के कोला मांजदे पे के गुरु गोबिंद सिंह जी नू 10 मिंट हो गए कोल खड़िया पिछे। बाबा जी का उधर लिव जदों सिंह नाल हुंदे सी गुरु गोबिंद सिंह बाबा जी, जदों ध्यान वेख्या साहब खड़े ने ते कहंदे कौला हाथ विच ही ए, सवा नाल लिबड़िया, हाथ भी लिबड़े ने सवा दे, ते डंडौत करके मालक नू कहंदे जी भुल हो गई आप जी खड़े ते मेरा ध्यान ही नहीं कि आप कोल खड़े। बख्श लेना गुरु गोबिंद सिंह महाराज दसना ते दूजे सिंघां नूं होणा। कहंदे दीप सिंह कोले मांजदा पे, बाबा जी तुहाडी कृपा नाल, गुरु गोबिंद सिंह महाराज तुहाडी कृपा नाल, ते तन गुरु गोबिंद

वेखो एक समाना इस पर पंचमय साचे नाम की वड्याई मत को धरो गुमाना सतगुर की जसनु मत आवे। महाराज गरीब नु आज सचे पातशाह फिर पुकारन हार होए ना बिने करन हार होए ना जेड़े सारे जगत नु एक बिने कर रहे ने भाई सतगुर की जसनु मत आवे। संसार दे लोगो जिसनु सतगुर की मत आ गई ना जेड़ा गुरु की मत ते चल गया वो फिर सतगुर माहे समाना सतगुरु विच समा जांदा है सतगुरु उस दे विच समा जांदा है। फिर कबीर साहब जी दे वाका अनुसार वो कहंदे ने भी संत राम में भेद किछ नहीं ना संत अंदर ते ना राम अंदर भेद कोई नहीं। अब तो जाए चढ़े सिंघासन मिल है सारंग पानी राम कबीरा एक भय एक हो गए। साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने भी उस परिपूर्ण परमात्मा दी शोभा करदिया कहा हे अकाल पुरख महाराज तेरी सिफ सलाह दे अंदर जुड़दिया संसार नू जदो वाक कहे ना ते कहन लगे भई ए बिद करत तपस्या भयो द्वैत एक रूप द्वैत एक रूप हो गए। दूजा रूप कोई है ना एदा मतलब सानू नजर नहीं आंदा। गुरु गोबिंद सिंह महाराज नू नजर आ रहा है गुरु अर्जन साहब नू नजर आ रहा है गुरु नानक देव जी महाराज नू नजर आ रहा है उन्हां नू दूजा रूप नजर आउंदा है। द्वैत एक रूप होए गयो किस तरह भाई जिवें धन फिर ए ना आकीए बहन इकट्ठे होए एक जोत दोए मूर्ति जिवें संसार दे अंदर पति ते पत्नी दा रिश्ता जोत एक हो जांदी मूर्तां दो नजर आउंदियां इसे तरह संसार दे अंदर जदो रब नू जपी दा ना जो सतगुरु की जिसनु मत आवे सो सतगुरु माहे समाना सतगुरु विच समा जांदा है जिनू सतगुरु दी मत आ जाए वो सतगुरु विच समा जांदा। भाई साहब भाई गुरदास साहब जी ने बड़ा सुंदर हवाला दिता।

हड़ हड़ हसे लोक बिडाणा। कहंदे भी कोई मुसाफिर आया मजनू दे देश अंदर, ते जिथे लैली वसदी सी ना लैला, जिस इलाके च लैला रहंदी सी उस इलाके दा ए मुसाफिर है। लंघदा जांदा लैली दी दरगाह दे विचों लंघिया, ते लैली दी दरगाह दे उपर जिहड़ा कुत्ता सी ना, लैली दी दरगाह दे उपर बहण वाला जिहड़ा कुत्ता, ओ नाल हो तुरिया। जदों मजनू दे इलाके दे विच आया, मजनू ने वेख्या मेरी लैला दी दरगाह दा कुत्ता है, मेरी लैला दी दरगाह तों आया, मेरी लैला दे चरण चटन वाला कुत्ता आया, मेरी लैला नूं नमस्कार करन वाला कुत्ता आया, पूछ मार मार के साफ करन वाला एक कुकर आया, सेवक आया। ते कहन लगा ए कुत्ता नहीं, ये ते महान है जिन्हें मेरी लैली दी सेवा कीती है, जिन्हें मेरी लैला दे चरणा नूं चटिया, जिन्हें मेरी लैला दे मकबरे नूं चटिया, दरगाह दे उपर बैठा रखवाली करदा, ओ मेरे नाल महान है। ते कुत्ते नूं वेख के ना पहचान करके कुत्ते दी, ते कुत्ते दे पैरां ते मथा टेकन लग पिया। कुत्ते दी पैरी पवै, कुत्ते दे पैरां ते पैण लग पिया, मथा टेकिया, कुत्ते दे चरणा ते अपने पैर अपना शीस लाया मजनू ने। लोग वेख के हस रहे ने भी ये मजनू की कर रहा, मुंह चुमदा, कुत्ते दे पैर चुमदा, कुत्ते दी पूछल नूं बार बार हाथ फेरदा, पलोसदा, मिलाप करदा, प्यार करदा, जफा पाउंदा। लोग हस रहे ने, पुछन लगा तुसी क्यों हसदे हो, तुसी क्यों हस रहे हो। कहन लगे भी तू ते बड़ा मस्ताना हो गया, भी कुत्ते नूं चट्टी जा रहे। कहन लगा मैं मस्ताना नहीं होया, मस्ताने तुसी हो गए हो, तुहानू नजर नहीं आ रहा मैं किनू चुम रहा, मैं किनू चट रहा, तुहानू नहीं नजर आउंदा, मैं ते ओनू चटदा पिया, मैं ते ओनू चुमदा पिया जो मेरे महबूबा दे देश चो आया, जो मेरी महबूबा दे दरगाह दे उपर अठे वक्त रहण वाला है। ए इस दे चरणा नूं चुमदा, इस नूं पलोसदा, इन्हे लैला दी दरगाह दे उपर बह बह पहरा दिता, ये महान है मेरे नालों। कहंदे ने एक बारी जेब नशा औरंगजेब

की पालकी आ रही है। पिछे संगतां सतनाम वाहिगुरु कर दियां आ रही हैं, अगे अगे गुरु के सिख प्यार वाले। कोई झाड़ू दे के थां साफ कर रहा है, कोई छिड़का कर रहा है, ते कोई सुंदर कपड़े विछा रहा है कि मेरा साहब जिथों आ रहा है वो भोए ते ना आवे। प्यार वालियां रूहां सेवा कर रही हैं। एक कोड़ा आके जिदे शरीर का रोम रोम कोड़ विच ग्रसिया होया, दुख विच ग्रसिया होया, आके टह पिया, महाराज मेरे ते कृपा करो, मेरे ते मेहर करो, मैं बड़ा दुखी हां, जां तां संसार तो इस दुनिया तो छुटकारा पवा दियो ते जां इस शरीर नू आरोग कर दियो। पता नहीं केड़े पापां दा फल मैं भोग रहा, ते जे तेरे चरणा विच आके भी पाप ना नसे, पाप ना दूर होए तो किथे होणगे। धन गुरु हरकिशन साहब सच्चे पातशाह जी ने जदों इस कोड़े वल नदर कीती, उस नदर तो अमृत दा मीह वसिया। वेखदियां वेखदियां ए कोड़े दा तन भी अरोग हो गया ते मन भी अरोग हो गया। कोई तन दा कोड़ तां कट लवेगा, ते जे मन विच कोड़ भरिया होया तां ओ किस कम है भाई जिदा मन कोड़ा होवे। गुरु नानक दे दर ते आके तन दा कोड़ भी कटिया जांदा है, मन दा कोड़ भी कटिया जांदा है। इस लई प्यार विच भिज के झूम के ओ फड़न

हर कृष्ण साहब सच्चे पातशाह। जदों दिल्ली आ रहे सन ता कुरुक्षेत्र दी पवित्र धरती तो लंघे ता पंडित लाल चंद जो मनिया परमनिया विद्वान सी जदों सुनिया के श्री गुरु हर कृष्ण साहब जी आ रहे हैं ते बाल अवस्था है विद्या दा हंकार होन करके कहन लगा एक बच्चा पांच सत साल दा गुरु नहीं हो सकता। चलो वेखिए पूछिए एडा लंबा नाम किवें रखा दे। द्वापर युग दे भगवान कृष्ण ने भी श्री कृष्ण नाम रखवाया है। इना ने श्री गुरु हर कृष्ण साहब रखाया ते आके जदों दर्शन कीते दर्शन करके ता मन निहाल हो गया ते पुछन लगा महाराज भई भगवान कृष्ण द्वापर युग दे अवतार होए हन उना ने श्री कृष्ण नाम रखाया सी और गीता दा उचारण कीता सी ते आपदा नाम भी श्री गुरु हर कृष्ण साहब है ते कम से कम तुसी गीता दे अर्थ ही करके विखा दियो उचारण करो श्री कम से कम गीता दे अर्थ करके विखा दियो। गुरु हर कृष्ण साहब अंतर जामी सब विद जाने ता किस पे आख सुनाइए जिना नू 14 लोकां दी खबर होवे जिना दे हिरदे विच निरंकार दी जोत जग रही होवे उना ले की मुश्किल सी। मन विच सोचिया जे मैं अर्थ कर दिते ता मन विच सोचेगा के हो सकदा है छोटे होंदियां किसे पंडित कोलों अर्थ पढ़े होन ते कहन लगे भाई असी की करने आन अर्थ तू कोई अपना बंदा लिया ये अर्थ तो ओदे कोलों भी करवा देंगे गुरु नानक दी बख्शिश नाल। उचारण करो श्री सात संगत बोलो श्री वाहिगुरु। इस पंडित ने एक चीवर मेहरा जो महामूर्ख सी जिदे मुख तो कोई शुद्ध बचन भी नहीं सी निकलता थर थरौंदा सी गल कर दिया उनू ले आया कहन लगा महाराज जे कराने जे तो एदे कोलों कराओ अर्थ। धन गुरु हर कृष्ण साहब सच्चे पातशाह जी ने जो छोटी जी छड़ी हाथ विच रखदे सन ते उस जीवर दे सिर ते रखी ते अगम निगम दी उसनू सोझी हो गई ते ऐसे गीता दे अर्थ सुनाए जो पंडित ने कदे अपने जीवन विच सुने नहीं सन। ज्यों ज्यों अर्थ सुनदा है नैना तो जल जा रहा है और उस सोहनी मूर्त विचों भगवान कृष्ण दे दर्शन हो रहे हैं। उचारण करो श्री चरणा ते टह पिया महाराज मेरी भुल बख्शो मेरे ते कृपा करो। कितना ही समा पंडित लाल चंद सतगुरां दे नाल ही रहा ऐसियां बरकतां जिस पासों अर्थ कराए सी ता नाम छज्जू सी ते गुरु ने ऐसी मेहर कीती के एक मेहरा छोले पुन्नन वाला अर्थ कर देवे। पर गुरु लई ए केड़ी वड्डी गल है जदों ऐसा कौतक वेख्या ता जमीन आसमान सारे ही